खापांगे दाखुते बेखुक्षं अबखा नेनि बखाबाय मालायखे कक्सायनाय खामु अबहायखे न नरकनि बखाबाय

0: जरायफ्रु बसक थंगलायमानि जरायफ्रु जिनि बसक हामजाक मंतंगमानि आनि आं फायु आनि दादा आनि मनाय बरबाय आनि हालक बसक देरा खतामनि बागै ओ जे मानना मुचुंमानि बागै फियाबा ओ मानना मुचुंमानि जोंन खाकचांग मारिया जों याकारि रेखा हंगाय जिनि बखा फिरक जाखामु हामजाक्लायमां खामु अबहाय आमसुक बखा कतरजों ओंगै मानलाया अबनो कक तुगै जिनि ओ हायुङ कक बाङाय मानि जों नुगु अबनो कसा कक दुफाय मानि गोरोंगै नायानो मानि गोरोङै मानलाया हेलो
1: हेलो
0: दिपर काहाम बहाय दं बाय काहाम दे
1: काहाम
0: नों खाता अमर जाग्रांनि फायखाबा किसा मिसा
1: दिमाना वापिनि आपका खातर मान जाखांगे बखर टपिंग
0: नों खेना नाकार जाखानि लांमाव आबहाय फादा फायगा सिचुवेसन जे नों नाकार सानना नांखा एबा नों बुहैबाय नाकार जाखना नांखा अककनो दै सालाय दं माने
1: आगि सराया होंगे चीनी आने मा मातो चाकिरि खालायदों चीन पारा गानाव आंखे चीनी पारा रावबो
0: फायदा
1: जों बिनि मुंखौ बिनि मुंखे सम्प्राय होंगे जों खोना खुदबजों मानिखे सम नाङा मुफ्राय सेलाहा सम्प्राय होननानै अमा मुंखा आने मा आन' नाहरैनाय
0: हेलो আবনো চিনে তাকুক হরিমঙ্গল ব কাছে সিরিয়াস কক সামানি বি তাকুক বাই কক বাংলায় মানে আমো বব নাকার সানিয়া আংব নাকার নাকারিয়া বট ফাইকে তো আং নাকার সান নাকার সানকে নাকার খামু গে বসে শেখ মানি বা আং তাঙে নাকার সানে আংব নাকার সানিয়া গে আবহাই কেন বরকনি অব বেলাইকে সিরিয়াস কাছা কক ব সাহরকা আংহাই নহাই সাও দাঁতিনো হামথুং বরং ও কক বাংলাই মুং গাইতা বুক বুক

अंजलि सामानी हंकाय बीना बहुके तमनाय चराय फ्रोनी ककन ब शेयर खाय खालायका तम गाबन बिसिं कासे सेरों जाखनाय कुबिनो दङ ताबुकनियाव जेनेरेशन रकनि बागै तमनि हंकाय ताबुसिं नुगो जे अख्रा जाखरा रकन बबुमुखुमानि बा बिनचै बाय दादारिंना नांमा रकन बुमुखुलाय रिंलायो गाबोथ चिनि कल्चरिया चिनि हुकुमुओ अब गोरै जों अख्रा सालचानि फानो अख्रा आंखांगे एबा दिबसानि फानो अख्रा आंखांगे जों बायनो मारिंनाय दादानो मारिंनाय आबोहाय के ओ हुकुम

बेलायखे मकल कायचम जाकमानि हिंके बोरै बोसारकनि रोंसोरोंमु तेबो बांग्रोनानि तै कामि आमचेरगो दंनाय रक तै संदुग दफानि बर' रकनि रोंसोरोंमु अबन तेबो बांग्रोनानि तै रों गोरों ओंनानि अब रों गोरों एबा रों सोरोंजाक न तेबो गोबां खायदि सानानि अबन नाहारमु औ समग्र शिक्षा फ्लेगशिप एडुकेशन प्रोग्रामनि ओंखे फायदिहाय नहाय थेदांसा रोजाबमु जों खोनालायनो अधिराज देबरमानि खरांआव

अधिराज देवमणि खरांग खाना थथ रिजाब मूंग खाना मानी यागल फाइदे ते तंग से रिजाब मूंग खाना लाइने रूमी मुराशिंग खरांग

இருக்கை ஆகாஷ்வாணி அகர்தலா காஷா கிளாசிக்கல் மியூசிக் நீ பாந்தா சங்சாக்கா பஸ்காங் நீ பாஷால் எபா மேத்தால் நீ ஷால்ச்சிபா நிஷை நீ சிதக் இங்கிரஜி பிஷி ஓஷாலோ சாஞ்சா தாம்தோக் தாம்புரு நிஷிமி பாந்தா செங்சாக்னாய் আগরতলানি সুকান্ত একাডেমি ও নরক যত্ন ন ও পান্ডা ও ফাইমা জাগানি বাকে কবক যাকো পান্ডা ও হাবনানি বাকে মুংসা এন্ট্রি কার্ড রক নাংলাক যত্ন ফাইমা নাই ও তংথত পান্ডা চংসাজাক তাই চাজাক উনানি বাকে নরক যত্ন ন আকাশবাণী আগরতলানি সিমি খাবাই খুববাই কবক যাগো সাকলাইম খনার জাখা

जों खोनाथ' सिगां देबरमानि रोजाब मुं खोनाबायखा दाबो खायनो हाथे तांसा रोजाब मुं खोनालायनाय बिमल देबरमानि खरांग'

0: लिंडा उन 11 लड़कियों में से एक थी जिसने मैंने ग्रीन कार्ड के लिए शादी की थी। मुझे वो लड़कियां याद भी नहीं, लेकिन लिंडा वो अकेली लड़की थी जिसे देखकर मुझे कुछ हुआ था।
1: She can't speak English and you can't speak Spanish. How exactly did you fall in love?
2: Well, love and music, sir. Have no language. Our love? It's more than words.
3: $42 come.
4: Ya no tengo dinero.
5: ¿Qué quieres que haga? ¿Qué te doy?

0: पंकज मलिक ने फिल्म संगीत को एक नई राह दिखाई। आज के फिल्मी गीतों में वेस्टर्न म्यूजिक का जो रूप नजर आता है, उस नागपुर में जब मैं उनसे
1: मेरा मुझ में कुछ नहीं।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।